आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का डीटीएच चैनल रागम, हर पल हर दिन भारतीय संगीत। आप सुन रहे थे भक्ति संगीत। यह आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत तो लीजिए प्रस्तुत है पहले धमार, तदुपरांत द्रुत तीन ताल पर तबला वादन. कलाकार हैं पंडित परिमल चक्रवर्ती. आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं हिरणमोय मित्रा. तो लीजिए प्रस्तुत है पहले धमार तथा उसके उपरांत द्रुत तीन ताल पर तबला वादन. कलाकार हैं पंडित परिमल चक्रवर्ती.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. This morning we present a Hindustani instrumental recital followed by a Hindustani vocal recital. Listen first to Dhamar followed by Drut Teen Taal on the tabla. Our artist is Pandit Porimal Chakraborty. Accompanying our artist on the harmonium is Hiranmoy Mitro. Listen now to Dhamar followed by Drut Teen Taal on the tabla. Our artist Pandit Porimal Chakraborty.

0: अभी आप पहले धमार तदुपरांत द्रुत तीन ताल पर तबलावादन सुन रहे थे। कलाकार थे पंडित परिमल चक्रवर्ती और आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे हिरणमय मित्रा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अभी प्रस्तुत है शुक्ला बिलावल पर आलाप ओ ध्रुपद। कलाकार हैं पंडित फाल्गुनी मित्रा। आपके साथ पखवाज पर हैं अपूर्व लाल मन्ना तथा हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं सनातन गोस्वामी। तो लीजिए प्रस्तुत है शुक्ला बिलावल पर आलाप ओ ध्रुपद। कलाकार हैं पंडित फाल्गुनी मित्रा।
1: You were listening to Dhamar followed by Drut Teen Taal on the tabla. Our artist was Pandit Porimal Chakraborty. Accompanying our artist on the harmonium was Hiranmoy Mitro. This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, we now present a Hindustani vocal recital. Listen to Alap and Drupad in the rag Shukla Bilawal. Our artist is Pandit Falguni Mitra. Accompanying our artist on the Pakhavaj is Apurbalal Manna and on the harmonium is Sanatan Goswami. Listen now to Alap and Drupad in the rag Shukla Bilawal. Our artist, Pandit Falguni Mitra.

0: अभी आप शुक्ला बिलावल पर आलाप ध्रुपद सुन रहे थे। कलाकार थे पंडित फाल्गुनी मित्रा, आपके साथ पखवास पर थे अपूर्व लाल मन्ना और हारमोनियम पर थे सनातन गोस्वामी। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम, 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू आलाप एंड ध्रुपद इन द राग शुक्ला बिलावल। आवर आर्टिस्ट वॉज पंडित फाल्गुनी मित्रा। Accompanying him on the pakhavaj was Apurbalal Manna, and on the harmonium was Sanatan Goswami. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है अलका देव मारूलकर का गायन, राग है कोमल ऋषभ आसावरी। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं प्रीत न कीजिए। द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है और उसके बोल हैं ना मोहे आस। In the program of Indian classical music, we present a vocal classical recital by Alka Dev Marulkar. Raag is Komal Rishabh Asavari. Vilambit composition is set to Ektal, Preet Na Kijiye. And Drut composition is set to Teen Tal, Na Mohe Aas.

0: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: ये था अलका देव मारुलकर का गाया राग कोमल ऋषभ आसावरी। आपके साथ तबले पर संगत की जमाल खान ने और सारंगी पर उस्ताद सुल्तान खान ने। और अब हम आपको सुनवाते हैं अलका देव मारुलकर का गाया राग ललिता गौरी। विलंबित रचना तीन ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं प्रीतम सैया। द्रुत रचना भी तीन ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं ध्रुव मंडल प्रसाद।
0: दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।
1: दैट वाज राग कोमल ऋषभ आसावरी, कंटिन्यूइंग द क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय अलका देव मारुलकर। वी नाउ प्रेजेंट राग ललिता गौरी। विलंबित कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल प्रीतम सैया, एंड द्रुत कॉम्पोजिशन इज ऑल्सो सेट टू तीन ताल ध्रुव मंडल प्रसाद। शी इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय जमाल खान एंड ऑन द सारंगी बाय उस्ताद सुल्तान खान।

0: यह था अलका देव मारूलकर का गाया राग ललिता गौरी। आपके साथ तबले पर संगत की जमाल खान ने और सारंगी पर उस्ताद सुल्तान खान ने। इसके साथ ही हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अलका देव मारूलकर का गायन अब संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई की भेंट थी।
1: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
0: दैट वॉज राग ललिता गौरी। विद दैट We conclude the classical vocal recital by Alka Dev Marulkar. She was accompanied on the tabla by Jamal Khan and on the sarangi by Ustad Sultan Khan. This program was a presentation of All India Radio, Mumbai.
1: This is Ragam DTH channel. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है कमाल सरवर साबरी का सारंगी पर बजाया राग मालकौंस. विलंबित द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है गुलाम सरवर ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट अ सारंगी रिसाइटल बाय कमाल सरवर साबरी. ही बिगिंस रिसाइटल विद राग मालकौंस. द विलंबित एंड द्रुतगत आर सेट टू तीन ताल. कमाल सरवर साबरी हैज बीन अकंपनीड ऑन द तबला बाय गुलाम सरवर.

0: कमाल सरवर साबरी का सारंगी पर बजाया राग रागेश्री मध्य लयगत झपताल में और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है गुलाम सरवर ने।
1: नाउ लिसन टू राग रागेश्री परफॉर्म बाय कमाल सरवर साबरी। द मध्य लय गत इज सेट टू झपताल एंड द द्रुत गत इज सेट टू तीन ताल। इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय गुलाम सरवर।

0: अभी आप कमाल सरवर साबरी का सारंगी पर बजाया राग रागेश्वरी सुन रहे थे। हौले पर आपकी संगति की थी गुलाम सरवर ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू राग रागेश्वरी ऑन द सारंगी बाय कमाल सरवर साबरी। ही वाज अकंपनीड ऑन द तबला बाय गुलाम सरवर। दिस प्रोग्राम वाज प्रेजेंटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH in Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रागम 24/7 DTH चैनल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं शास्त्रीय गायन। प्रारंभ में सुनते हैं विदुषी लक्ष्मीबाई जाधव द्वारा प्रस्तुत राग बहार। विलंबित तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है सब बहार आए और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है बसंत की धूम मची। साथ संगत सारंगी ए के कुंटे, तबला डी के जोशी। तो ये सुनते हैं राग बहार, कलाकार विदुषी लक्ष्मीबाई जाधव।

श्रोताओं, अभी आपने सुना विदुषी लक्ष्मीबाई जाधव द्वारा प्रस्तुत राग बहार। आपके साथ सारंगी पर संगति कर रहे थे ए.के. कुंटे और तबले पर संगति कर रहे थे डी.के. जोशी। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं सरदारीबाई कारदगेकर द्वारा प्रस्तुत राग पुरिया। विलंबित त्रिताल में निबद्ध रचना के बोल हैं आज पलन आए।

सरदारीबाई कारदगेकर द्वारा प्रस्तुत राग पुरिया आप सुन रहे थे। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं विदुषी गंगूबाई हंगल द्वारा प्रस्तुत राग अडाणा। विलंबित तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है जो तेरी रजा जो चाहे। साथ संगत हारमोनियम अप्पा जलगांवकर, तबला शेषगिरी हंगल। तो आइए सुनते हैं विदुषी गंगूबाई हंगल द्वारा प्रस्तुत राग अडाणा।

श्रोताओ, अभी आपने सुना विदुष गंगूबाई हंगल द्वारा प्रस्तुत राग अडाणा। आपके साथ हारमोनियम पर संगति कर रहे थे अप्पा जलगांवकर, तबले पर थे शेषगिरी हंगल। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिती रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए प्रस्तुत है राग चंद्र कौस पर ख्याल. कलाकार हैं प्रबीर बंदोपाध्याय. आपके साथ तबले पर हैं जॉयदास गुप्ता और हारमोनियम पर हैं अमिताभ भू भट्टाचार्य. तो लीजिए प्रस्तुत है राग चंद्र कौस पर ख्याल. कलाकार हैं प्रबीर बंदोपाध्याय.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This evening we present Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen first to Khayal in the rag Chandra Kaus. Our artist is Prabir Bondopadhyay. Accompanying our artist on the tabla is Joy Das Gupta and on the harmonium is Amitava Bhattacharya. Listen now to Khayal in the rag Chandra Kaus. Our artist, Prabir Bondopadhyay.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग चंद्र कौंस पर ख्याल सुन रहे थे। कलाकार थे प्रवीर बंदोपाध्याय। आपके साथ तबले पर थे जॉयदास गुप्ता और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे अमिताभ भट्टाचार्य। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है राग बागेश्वरी पर यशराज वादन। कलाकार हैं शमिता बंदोपाध्याय। आपके साथ तबले पर हैं नवारुण कुमार दत्ता। तो लीजिए प्रस्तुत है राग बागेश्वरी पर यशराज वादन। कलाकार हैं शमिता बंदोपाध्याय।
1: You were listening to Khayal in the Raag Chandrakaans. Our artist was Prabir Bandopadhyay. Accompanying him on the tabla was Joydas Gupta and on the harmonium was Amitava Bhattacharya. This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present an Esraj recital. Listen to the Esraj in the Raag Bageshri. Our artist is Shamita Bandopadhyay. Accompanying our artist on the tabla is Navarun Kumar Datta. Listen now to the Esraj in the Raag Bageshri. Our artist, Shamita Bandopadhyay.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग बागेश्वरी पर यशराज वादन सुन रहे थे। कलाकार थी शमिता बंदोपाध्याय। आपके साथ तबले पर थे नवारुण कुमार दत्ता। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिस्निंग टू द यशराज इन द राग बागेश्वरी। आवर आर्टिस्ट वॉज शमिता बंदोपाध्याय। Accompanying our artist on the tabla was Navarun Kumar Datta. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH in Classical Music Channel.
1: ये है रागम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत प्रस्तुत है रविराज शंकर का बजाया बांसुरी वादन. सबसे पहले आप राग विभास प्रस्तुत करेंगे. मध्य लय बंदिश रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं शीत प्रसाद मिश्र.

अभी आप सुन रहे थे रविराज शंकर का बजाया बांसुरी पर राग विभास। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया राग श्याम कल्याण में एक रचना जो कि रूपक ताल में निबद्ध है। आपके साथ तब पर संगत कर रहे हैं शीतल प्रसाद मिश्र।

ये रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे रविराज शंकर का बजाया बांसुरी पर राग श्याम कल्याण। आइए अब

अभी आप सुन रहे थे सुश्री लक्ष्मी शंकर का गाया माझ खमाज में छोटा ख्याल। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में उपशास्त्रीय गायन. कलाकार हैं नैना देवी. आप सुनेंगे दादरा, बोल हैं गोरी के नैनों से चला जादुआ. संगत कलाकार हैं तबले पर इस्माइल दद्दू खां और सारंगी पर सरदार खां. ये रिकॉर्डिंग वर्ष 1980 में की गई थी. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय नैना देवी. द रेंडिशन कमेंसेस विद अ दादरा. द अकॉम्पनीमेंट हैज बीन प्रोवाइड बाय इस्माइल दद्दू खां ऑन द तबला and Sardar Khan on the sarangi. This was recorded in the year 1980.

अगली प्रस्तुति है कजरी। बोल हैं धीरे धीरे से झुलाओ सुकुमारी सिया हो। द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज कजरी।

अब आप सुनेंगे दादरा मिश्र गारा, बोल हैं सुबिसरत नाही। नाउ लिसन टू अ दादरा मिश्र गारा।

आप सुन रहे हैं हिंदुस्तानी उपशास्त्रीय गायन, कलाकार हैं नैना देवी। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय नैना देवी। ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे ठुमरी भैरवी। बोल हैं हंस हंस गरबा लगाए। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स ठुमरी भैरवी।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी उपशास्त्रीय गायन। कलाकार थी नैना देवी। संगत कलाकार थे तबले पर इस्माइल दद्दू खां और सारंगी पर सरदार खां। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू विल लिसनिंग टू हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय नैना देवी। द अकॉम्पनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय इस्माइल दोखा ऑन द तबला एंड सरदार खां ऑन द सारंगी। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है सतीश प्रकाश कमर का शहनाई पर बजाया राग भैरव. विलंबित गत तीन ताल में और मध्य लयगत झप ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद फैयाज खाने.
2: This is the Ragam Channel of All India Radio. We now present a Shehnai recital by Satish Prakash Kamar in Rag Bhairav. The Vilambit Gat is said to Teen Tal and Madhyale Gat is said to Jhap Tal. He is accompanied by Ustad Fayyaz Khan on Tabla.

0: अभी आप सतीश प्रकाश कमर का शहनाई पर बजाया राग भैरव सुन रही थी। और लीजिए अब सुनिए राग मदमात सारंग। मध्यलय और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद फैयाज खाने।
1: यू आर लिसनिंग टू अ शहनाई रिसाइटल इन राग भैरव बाय सतीश प्रकाश कमर। नाउ लिसन टू राग मदमात सारंग। द मध्यलयगत एंड द्रुतगत इज सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप सतीश प्रकाश कमर का शहनाई पर बजाया राग मधमाद सारंग सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी उस्ताद फैयाज खाने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू आर लिसनिंग टू अ शहनाई रिसाइटल इन राग मधमाद सारंग। ही वाज अकंपनीड बाय उस्ताद फैयाज खान ऑन तबला। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए संजीवनी जोशी और साथियों के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना।

0: अभी आप सुन रहे थे संजीवनी जोशी और साथियों के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना। अब सुनिए श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में दी आ कुलकर्णी की रचना। संगीतकार है राम कदम।
1: जय जय।

दी आ कुलकर्णी की रचना आप सुन रहे थे श्रीकांत पारगावकर के स्वर में। संगीतकार थे राम कदम। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए मालती पांडे के स्वर में कवि ब्रह्मानंद की रचना।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे मालती पांडे के स्वर में कवि ब्रह्मानंद की रचना। कार्यक्रम की अगली रचना है संत तुकाराम महाराज की, जिसे गाया है बबनराव नावडीकर ने।

आप सुन रहे थे बबनराव नावड़ीकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर। कार्यक्रम में अगली भक्ति रचना है संत मीराबाई की, जिसे गाया है कीर्ति शिलेदार ने।

श्रोताओं, अभी आपने कीर्ति शिलेदार के स्वर में संत मीराबाई की भक्ति रचना सुनी। अब सुनिए संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना विठ्ठल शिंदे के स्वर में।